0: असंख नाव असंख थाव अगाम अगाम असंख लो
1: असंख कहे सिर पार होए अखरी नाम अखरी सालाहा अखरी ज्ञान गीत गुण गाहा
0: अखरा सिर संजो अखरा लिखण बोलण बाण अखरा सिर संजोग बखान
1: जिने लिखे शिष्य नाहे जि फरमाए तिप ते पाहे
0: जेता कीता तेता नाव बिन नामे नाही को थाओ
1: कुदरत गवण कहा विचार वारिया न जावा एक वार
0: जो तुद पावे साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार
1: भरिए हथ पैर तन देहे पानी तो तै उतरस खेहे
0: मूत पलीते कपड़ होए दे सा बूण लईए ओ धोए
1: भरिए मत पापा के संग ओ तो

0: जेको खाए को आखण पाए वो जाने जेतिया मोह खाए
1: आपे जाने आपे दे आखे सेपे के ई के
0: जिसनु बख्शे सिफत सलाह नानक पात चाही पात चाहो
1: अमूल गुण अमूल व्यापार अमूल व्यापारी अमूल भंडार
0: अमूल आवे अमूल ले जाए अमूल पाए मुला समाए
1: अमूल धर्म अमूल दीवान अमूल तुल अमूल परवान
0: अमूल बख्शीस अमूल निशान अमूल कर्म अमूल

0: गावन जति सति संतोखी गावे वीर करारे
1: गावन पंडित पढ़ने की सर जुग जुग वेदा नाले
0: गावे है मोनिया मन मोहन।

0: अल्लाह है, अजा है, अनंत है, महंत है,
1: कन्हर श्री कन्हर लांब है, सब है,
0: अगम्य है, अजम्य है, अभूत है,
1: अलोक है, शोक है, कर्म है, परम है,
0: अजीत है, अपीत है, अबाह है, अगाह है,
1: निदान है, नीक है, फ्रीक है,
0: कुचंग पर्याप्त चंद्र,
1: नमो सर्वमान्य समास्ति निदान्य, नमो देव देवे पेखी अपेवे,
0: नमो काले काले, नमो सर्व पाले, नमो सर्व गौणे, नमो सर्व गौणे,
1: नाथिन संगी परमाथिन।

0: आशीष दिशा के आप जब पिसा के आंगन कर्म के आप पंच परम
1: के
0: भगवान के धर्म तो जाए के सुख वर्ण सर्वा भरण
1: जगतन कीर्ति है के शत्रंग क्षत्रि है के।

0: सुंदरवा दे गंजे गादे शुभ सरभागे सर्वानुरागी
1: निर्भुक्त स्वरूप है चित है छूत है के नरकन पर नाश है पृथ्वी अल पर वास है
0: सदा वंश सदा भोग स्वरूप प्रजोक्त अनूप है
1: निरुक्त सदा है।

0: ते सुर है
1: ब्रह्मंड से है कल खंड से है परते पर है करना कर है
0: राजा पै थपा था पै कृता कृत अमृता अमृत है
1: अमृता अमृत है करना कृत है कृता।

0: सात समुद्रन लोक गयो परलोक गवायो
1: वक्यां सु बैठ कैसी ऐसी सुबह सुब तायो
0: साच कहो सुन ले हो सब जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो
1: पाहन पूत्र सुर कौन लंगर लटकायो।

0: जग माया के क्या तुझ कर्म कमाया,
1: के कर्म कमाया तुझ शरीरा जा तू जग में आया,
0: रतन रचिया सुर माना बसाया,
1: प्रसादी हर मन बसिया पूर्व लिखिया पाया,
0: नानक के शरीर प्रवान हुआ जन सतगुर स्यों चित लाया,
1: ए नेत्रो मेरे हो हर तुम में जो तरी, हर बिन अवर न देखो।

प्रेम की ओह तिन ही प्रपायो जे अंदर प्रेम है गुरु की गोरचे छिण मात्र भी बंदे दा बैठिया परवान है ते हिरदे चे प्रेम नहीं ते जिन्ना मर्जी बंदा धार्मिक बिरती दा होवे प्रेम तो बिना परमेश्वर दे दर ते कदे खेड नहीं बन सकेगी। हजूर कहिंदे उहने रूप उहने सुचज ते कुचज नहीं तकिया मोरो कछ ना विचारियो कुछ नहीं वेख्या वाहिगुरु जी ने प्रेम गए हो मोहे हर रंग पीन मालिक ने प्रेम विच अपने प्यार विच मैनू रंग लिया है। अखीर दे बोलने जी पेख्यो लालन पाट बीच खोए आनंद चिता हरखे पतीन। वाहिगुरु परमात्मा परमेश्वर दा दीदार होया पाट बीच खोए जिहड़े किवाड़ बने सन विचकार ओ खुल गए। एक जपजी साहब विच बचन पढ़दे हां जी हजूर जपजी साहब की बाणी च अठ सवाल करते हैं तो यह सवाल दो ने जेडे सुनो ध्यान नाल किव सचियारा होई है एक किव कूड़े टुटे पाल दूजा सवाल। दोवां सवालों के जवाब हजूर ने एक ही पंक्ति विच बख्शिया है। पाल का अर्थ वैसे इत्थे कंध है वैसे पाल का अर्थ बाणी च वख वख तुसी पढ़दे हो इस देही को पाल उत्थे पाल शब्द का अर्थ है भी देही नू पालन की गल हजूर करनगे। इत्थे पाल का अर्थ है दीवार मालक कहिंदे मनुख सचियार किवें बने ते झूठ दी दीवार टुटे किवें। एक पासे वाहिगुरु परमेश्वर जी है एक पासे जीव रूपी स्त्री आ इह पर्दा विचों खुलेगा ते ताही उहदे नाल मिलाप हो सकना। हजूर कहिंदे आ मालक ने मेहर कीती किवें बंदा सचियार बने किवें झूठ दी कंध टुट जाए। हजूर ने कहा किव सचियारा होई है किव कूड़े टुटे पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल जदों रजा विच बंदा तुरदा ते इस गल दी सोझी आउंदी है। हजूर कहिंदे आ मालक दे दीदार होए जिहड़ा पर्दा विचकार बनिया सी भरम दा टुट गया आनंद चिता हिरदे च चित विच आनंद ही आनंद है हरखे पतीन खुशी नल अंदर झूम गया तिस ही को ग्रह सोई प्रभ नानक। ओ जिहड़ा हिरदा है जीव दा रब परमेश्वर दा घर बन गया सो ठाकुर तिस ही को तीन। ओ जिहड़ा सेवक सी अकाल पुरख परमेश्वर परमात्मा दा सेवक बन गया है। तीन दा अर्थ है किसे दा अधीनगी कबूलनी किसे दा सेवक बन जाना। जदों वाहिगुरु परमेश्वर हिरदे विच वसदे आ फिर अकाल पुरख ते जीव दे विचकारों दूरियां मिटदियां ने। उस अवस्था विच मनुख दा जीवन आरंभ हुंदा जिन्हों हजूर बाणी च बार बार कहिंदे आ संतां को मत कोई निंदो संत राम है एको। वाहिगुरु परमेश्वर दे प्यारे फिर एकमिक रूप हो के इस अवस्था विच पहुंचदे आ जिन्हों हजूर ने बाणी च बचन किया जिन्हां ना विसरै नाम से किनेह आ भेद न जाणो मूल साई जेहा। जिन्हां नूं रब दी याद भुलदी नहीं ओह अकाल पुरख परमेश्वर दे इन भिन्न रूप हो गए। सतगुरु दाता मेहर करे इह पावन पवित्र बचन साडे हिरदे विच वसण तां जो अकाल पुरख परमेश्वर दी बख्शिश नूं असीं हिरदे विच वसा सकीए। आप सारियां रब रूप संगतां दा धन्नवाद है जी। जुगो जुग अटल गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी दा कोटान कोटान शुकराना समुचे ग्रंथी साहबाना का धन्यवाद बेअंत भुलां चुकां दी खिमा गुरु फतेह दी सांझ पावो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

अष्टपदी जय मात पिता सुतमित न पाई मन ऊहा नाम तेरे संग सहाई जा मा भ्यान दूत जम दलाया ता केवल नाम संग तेरी चलै जय मुश्किलो व्यत पारी हर को नाम कनमाए उदारी इनक पुनः चरण करतनी तरै हर को नाम कूट पाप पर हरै गुरमुख नाम जप मन मेरे नानक पाव सुख नेरे सकल सिष्ट को राजा दुखिया हर का नाम जप तुम सुखिया लाख करोड़ी बंधन परै हर का नाम जप निस्तरै अनक माया रंग तिखना बजावै हर का नाम जत कावै हर का नाम जपत कावै जय मार्ग ए जात अकेला तय हर नाम संग हो सहेला ऐसा नाम अनसदा त्याई नान गुरमुख परम कत पाई है छूटत नहीं कोटलक बाही नाम जपते पार पराही अनक बिघन जाय संघारे हर का नाम तत्काल उदारे अनक जोन जन्मे मर जाम मान नाम जपत पावी विश्राम हौ मैला मन कबू ना तू वै हर का नाम कूट पाप खोवे ऐसा नाम जप मन रंग नानक पाइये साधक संग जय मार्ग गण जाहि न कूसा हर का नाम ऊहा संग तोसा जय पेंडे महा अंध गुबारा हर का नाम संग उजियारा जहां पंत तेरा को ना सुजानू हर का नाम तै नाल पछानू जय मा प्यार तप्त वो कामू तै हर के नाम की तुम पर शाम जय त्रिखा मन तुझ आकर खै तै नानक हर हर मृत बरखै भक्त जना के बर्तन नाम भक्त जना की बर्तन नाम संत जना के मन विश्राम हर का नाम दास की ऊट हर के नाम उदरे जन कूट हर जस करत संत दिन रात हर हर औखद साधक मात हर जन के हर नाम दान पार ब्रह्म जन की नो दान मन तन रंगर ते रंग एकै नानक जन कै बिरत विवेकी हर का नाम जन कौ मुक्त जुक्त हर के नाम जन कौ तृप्त भुक्त हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जुत का परिणाम पंग हर का नाम जन की वड़ियाई हर के नाम जन सुबा पाई हर का नाम जन को पूग जोग हर नाम जप कछ नाई ब्यूगा

हर तन जन को आ प्रभु दीना, हर हर जन के उठस्तानी, हर प्रताप जन वरना जानी, ओत पोत जन हर सरातै, सुन संवाद ना व्रसमाते, आठ पैर जन हर हर जपे, हर का भक्त भक्त नि छपै, हर की भक्त मुक्त भव करे, नाग जन संकेते तरे, पार जाते वर को नाम काम तेन हर हर गाम है, सब ते उत्तम हर की कथा, नाम संत दर दुलता, नाम की महिमा संत रिदवसै, संत प्रताप दूर सब नसै, संत का संग वड पागी पाई, संत की सेवा नाम ते आई है, नाम तुल कश वरना हुए, नान गुरमुख ना पावे जन कोई सलोका, बहु सास

ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता, ब्रह्म ज्ञानी सद जीवै नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुक्त जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष दाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब उपरहाथ।

अनुपर कहारि कई कोट हो पुजारी कई कोट आचार व्यवहारी कई कोट पाए तीर्थवासी कई कोट बन परमेदासी कई कोट बेत के स्रोते कई कोट तपसर होते कई कोटा तुम ध्यान धार है कई कोट कब का विचार कई कोट नपत नाम ते आवे नानक करते का अंत न पावे कई कोट पै भवानी कई कोट अंत अज्ञानी कई कोट किरपन कठोर कई कोट अभिगत आत्मन कोर कई कोट पदर को हराय कई कोट पर दुख न कराय कई कोट माया सुरमाह कई कोट प्रदेश प्रमाव जित जित लाभ तित तित लगना नान करते की जाने करता रचना कई कोट सद जति जोगी कई कोट राजस भोगी कई कोट पंखी सर्व पाए कई कोट पाथर बिरख निप जाए कई कोट पवन पणि बसंतर कई कोट दे सुमंडल कई कोट सस्य सुरन खत्तर कई कोट देवदान इंद्र सर सिर सतरा सगल समग्री अपने सूत धार है नानक जिस भावै नानक जिस भावै तिस तिस निस्तारे कई कोट राजस्ताम साध कई कई कोट पेत प्रासिमर तरसास कई कोट की रतन समुद कई कोट नाना प्रकार जंत कई कोट की चर जीवै कई कोट गिरी मेर स्वरण जीवै कई कोट जक किन्नर पिसाच कई कोट भूत प्रेत सुकर मिर्गाच सबते नेरे सबूत दूर नानका पिल पितरिया भरपूर कई कोट पाताल के वासी कई कोट नरक सुरग निवासी कई कोट जन्मै जीव है मर है कई कोट बौजो नीफरै कई कोट बैठ ही खा है कई कोट काल है थक पा है कई कोट किया तनवंत कई कोट माया मैं चिंता जह जह पाणा तै तै राखे नानक सब किछ प्रभ के हाथे कई कोट भय बरागी राम नाम संगतन लागी कई कोट प्रभ को खोजनते आत्मे पार ब्रह्म हंते कई कोट दर्शन प्रभ्यास तिनको मिले प्रभ विनाश कई कोट मांगे ससंग पार ब्रह्म तन लागा रंग जिनको होय आप सुप्रसन्न नानक ते जन सदा तन तन है कई कोट काणी अरखंड कई कोट खाणी अरखंड कई कोट आकाश ब्रह्मांड कई कोट ओ अवतार कई युक्त किनु विस्तार कई बार पसरू पसार सदा सदा ओंकार कई कोट किन बपात प्रप्त ब्रह्मा समात ताका अंत ना जाने कोए आपे आप नानक प्रभु सोए कई कोट पार ब्रह्म के दास तिन होवत आत्म प्रगास कई कोट तत्क बेते सदन हारे इको नेत्रे कई कोट नाम रस पीवै अमर पै सब सद ही जीवै कई कोट नाम गुण गावै आत्म रस सुख सहज समावै अपने जन को सासा समारे नानक कोई परमेश्वर के प्यार

0: जल थल महियल सो यस्तपति कारण ग्रावण करने जोग जो तुस पावे सोई होग खिन मैं थाप थाप नहारा अंतनी किश पारा वारा
1: हुक्मे तार तर रहावे हुक्मे उपजे हुक्म समावे हुक्मे ऊंच नीच व्यवहार हुक्मे अनक बन अनक रंग प्रकार कर कर देखे अपनी मड़ियाई नानक सब मैं रहा समाई प्रभ पावै मानुगत पावै प्रभ पावै ता पाथर त्रावै प्रभ पावै बिन सास ते राखै प्रभ पावै ता हर गुण भाखै प्रभ पावै ता पतत उधारै आप करे अपन विचारै दोहां सिरियां का आप स्वामी खेलै बिकसै अंतर जामी जो पावै सो कार करावै नानक दृष्टि अवर न आवै कहो मानक ते क्या होए आवै जो तिस पावै सोई करावै इसके हाथ होए ता सब किछ ले जो तिस पावै सोई करे अणजानत बिख्या में रचै जे जानत अपन आप बचै परमे पूला दै दिस धावै निमख माए चार कुंड फिरे आवै कर कृपा जस अपनी भक्त दे नानक ते जन नाम मिले खिन मैं नीच कीट को राज पार ब्रह्म गरीब निवाज जा कर दिष्ट कछु न आवै तिस तत्काल दै दिस प्रगटावै जा को अपनी करै बख्शीस ता कलेखा न गणै जगदीस जियो पिंड सब तिसकी रास कटकट पूर्ण ब्रह्म प्रगास अपनी बणत आप बणाई नानक जी वै देख बढ़ाई इसका बल नाही इस हाथ करन करावन सर्व को नाथ आज्ञाकारी बपरा जियो जो तिस भावै सोई पुणती यो कबू ऊंच नीच मैं बसै कबू सो कर करंगस कबू निंद चिंद व्यवहार कबू बकाश प्याल कबू बेता ब्रह्म विचार नानक मिलावन हार कबू नृत करै बो भांत कबू सोए रह दिन रात कबू मां क्रोध बिकराल कबू सर्व की ओतरवाल कबू होए बह बड राजा कबू पेखारी नीच का साजा कबू अप कीरत में आवै कबू भला भला कहावै जो प्रभ रखै ते वीर है गुरप्रसाद नानक जस कह कबू होए पंडित करे बख्यान कबू मोन धारी लावे ध्यान कबू धरती तिशनान कबू सिद साध मुग्यान कबू कीट हस्तंग होए जी अनक जौन भरमै प्रमीया नाना रूप जो स्वांगी दिखावै जो प्रभावै तिवै निचावै दुध जो तिस पावै सोई होए नानक दूजा अवर न कोई कबू साध संगते उपावै उस स्थान ते बौर न आवै अंतरोय ज्ञान प्रगास उस स्थान का नहीं विनाश मंथन नाम रतेक रंग सदा बसै पार ब्रह्म कै संग ज्यों जल मैं जलिया कटाना त्यों ज्योति संग ज्योत समाना मिट गए गवन पाए बिश्राम नानक प्रभ कै सदगुरबान सलोक सुखी बसै मस्कीनिया आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले अष्टपति जिसकै अंतराज अभिमान सो नरक पाती हो स्वान जो जानै मैं जो बनवंत सुहोवत बिष्टा का जंत आपस कहो कर्मवंत कहावै जन्म मरै बजोन प्रमावै धन भूमिका जो करै गुमान सो मूर्ख अंधा ज्ञान कर कृपा जिसकै हृदय गरीबी बसावै नानक इहां मुक्ता गै सुख पावै तनवंता होए कर गर्भावै तृण समान के संग न जावै बहु लश्कर मन मानुक उपर करे आस पल पीतर ताखा होए विनाश सब ते आप जाने बनवंत खिन मैं होए जाए पसमंत किसे न बदे आप अंकारी धर्म राय तिस करे कुवारी गुरप्रसाद जाका मिटे अभिमान सोजन नानक दरगा प्रवान कोट कर्म करे हूं तारे सरम पावे सगले बिरथारे अनक तपस्या करे अहंकार नरक सुरग फिर फिरे अवतार अनक जतन कर आत्म नहीं द्रवै अर दरगे को कैसे गवै आपस को जो भला कहावै तिसे भलाई निटना आवै सर्व किरण जा कमन होए को नानक ता की निर्मल सोए जब लग जाने मुझते किछ होए तब किसको सुख नाही कोई जब बेजाने मैं किछ करता तब लग गर्भ जौन मैं फिरता जब तारे को बैरी मीत तब लग निचल नाही चीत जब लग मोह मगन सकमाए तब लग धर्म राय दे सजाए प्रभ कृपा ते बंधन टूटै गुरप्रसाद नानको छूटै सहज खटे लाको उठतावै तृप्त नावै माया पाछे पावै अनक भोग बिख्या के करै न तृप्तावै खप खप मरै ਬਿਨਾ ਸੰਤੋਖ ਨਾਹੀਂ ਕੋ ਰਾਜੈ ਸੁਗਨ ਨੌਰਥ ਬਿਰਤ ਹੈ ਸਭ ਕਾਜੈ ਨਾਮ ਰੰਗ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਏ ਬਡਭਾਗੀ ਕਿਸੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਆਪੇ ਆਪ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾਨਕ ਹਰ ਜਾਪ ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਕਰਨੇ ਹਾਰ ਇਸਕੇ ਆਤਕਾਮ ਵਿਚਾਰ ਜੈਸੀ ਦਿਸ਼ਟ ਕਰੇ ਤੈਸਾ ਹੋਏ ਆਪੇ ਆਪ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ ਜੋ ਖੁਸ਼ੀਨੋ ਸੋ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਸਭ ਥੇ ਦੂਰ ਸਭੋ ਕੈ ਸੰਗ ਬੂਜਾ ਦੇਖਿਆ ਕਰੇ ਬਬੇ ਕਾਪੇ ਕਾਪੇ ਅਨੇਕ ਮਰੇ ਨਾ ਬਿਨਸੇ ਆਵੈ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾਨ ਸਦੀ ਰਹਿ ਸਮਾਏ ਆਪ ਉਪਦੇਸਿਆ ਸਮਝੇ ਆਪ ਆਪੇ ਰਚਿਓ ਸਭ ਕੈ ਸਾਥ ਆਪ ਕੀਨੂੰ ਆਪਣ ਵਿਸਤਾਰ ਸਭ ਕੁਛ ਉਸਕਾਉ ਕਰਨੇ ਹਾਰ ਉਸਤੇ ਪਿੰਨ ਕਹੋ ਕਿਛ ਹੋਏ ਸਾਂਤ ਨੰਤਰ ਇੱਕੋ ਸੋਏ ਆਪਣੀ ਚਲਦਾ ਆਪ ਕਰਨੇ ਹਾਰ ਕੁਤ ਕਰੇ ਰੰਗ ਪਾਰ ਮਨ ਮੈਂ ਆਪ ਮਨ ਆਪਣੇ ਮਾਹੇ ਨਾਨਕ ਕੀਮਤ ਕਹਿ ਨਾ ਜਾਏ ਸਤ ਸਤ ਸਤ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਨੇ ਮਕਿਆਨੀ ਸੱਚ ਸੱਚ ਸਤ ਸਭ ਕੀਨਾ ਕੋਟ ਮਦੇ ਕਿਨੇ ਬਿਰਲੈ ਚੀਨਾ ਭਲਾ ਭਲਾ ਭਲਾ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਅਪਾਰ ਅਨੂਪ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਘਟ ਘਟ ਸੁਣੀ ਸਰਵਣ ਬਕਿਆਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਪੁਨੀਤ

प्रेस वाव नेत्रो पेक दर्शको ए मन बिक से साचम तो हे भव जनके मन तनंग बिरला को उपा वैसांगिक बस दीजिए कर मैया गुरु प्रसाद नाम जप लया था कि उपमा कहीं न जाए नानक रह सर्व समाए प्रभु बख्शन दीन दयाल भक्त वश सदा कृपाल अनाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व कटाय करत ब्रत पाल हाथ पुर कारण करतार पद जनके प्राण आधार जो जपे सोए पुनीत भक्त पाहिं लावे मन हीत मंदिर गुणियार नीचे जान नानक तुम निसन पुरख भगवान सर्व बैकुंठ मुक्त मोख बाइक निम करके गुण गायन गराज भोग बड़े आयर के नाम की कथा मन भाई बहु भोजन का प्रसंगीत रसम जप दिया रानीत बली कसो करनी सो बात नवंतर दे बसे पूर्ण गुरमंत साह संग प्रभ देव निवास सर्व सुख नानक प्रकाश लोक सर गुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप अपन किया नानक का फेवर जाप अष्टपति जब अकार कृष्णा दृष्टिता जब अकार कृष्णा दृष्टिता पाप पुंतम कह त्यो था जब धारी अपन सुन समाध था बैर रो के संग मात जब इस भरन चेर न जाप तो तब अर्क सुख हो किसे व्याप्त जब अपने आप पार ब्रह्म था मोह मोह का शोभ परम अपन केला प्रतिजा नान करने आ नतीजा जब तो ब्रह्म केवल नहीं था बंद मुक्त को किसको कहनी जब एक क्या रगम पार तब नर सुर को कौन उतार जब निर्गुण प्रभु से सुभाए तब शिव शक्ति का उगताए जब आपे आप अपनी जोत रह तब कौन डर कौन कत डर है अपने जलताप करने हार नानक ठाकुर रगम पार हुआ अपना सिंह को अपना सुन तन जन मन को काम बिना सुन जब पूर्ण करता प्रभु सोए तब जम की त्रास को कुछ होई जब अवगत गोचर प्रभ एका तब चित्र गुप्त गज पूछ तलेखा जब नाथ रंजन गोचर गादे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे अपने आप आप ही तर जा नानका प्रूप आप ही ऊपर जा जन्द्रमल पुरक पुरक पद होता तब बिन मेल का कहतो ता जन्द्रम जन्द्रम का निर्बाण दे कौन कुमान कौन विमान जैस रूप केवल जगदीश हो तैशाल शिद्रक्त को गीस हो जैचो स्रूपी जो संग समाव है तै किसा पू कौन तरफ था वै कन ग्रामन करने हार नानक ते का नाय समार जब अपनी सुबह अपन संग बनाई तब कौन माए बाप मित्र सुत भाई जैस रूप कला पेपर बीन तब एक देव का उ कुचीन जब अपने आप आप उतार है तो सघन अप सघन काम विचार है जपन जपन अपने रहता कौन कह ठाकुर कौन कहिए चेहरा बिस्म बिस्मर बिस्माद नानक अपनी गजा नू आप जय शल छेद भेद समाया किसी व्यक्त माया आप सको आपे आदेश ते कौन का नाम प्रवेश हो जाए कह के भवंता दे कौन चिंत लागे चिंता जय अपन आप आप दया दे कौन कदे कौन सुने हारा बहु बेअंत उचते उचा नानक आपस को आपे पाहुचा जावर जो परपंच कार ते गुण में किनो बस्तार पाप कुंते पै कावत को नर को सुरक बशाव थाल जाल माया जंजाल हमें मो परम पै भार दुख सुख मान अपमान अनेक प्रकार की बखियान अपने खिलाफ देखा गया समुचा तो नानक एक है जय अवगत भक्त आप जय बसरे प्रसाद संत प्रताप दू दू पा खा पे धन उनकी शोभा बनी आपे खो त करे अन्न जो जा फिर भोग जो जिस भाव तस अपन ना लाए जिस भाव तस खेल खिलाव है बेशुमार अथाह गणत तुल जो बुलावो त्यो नानक दास बोलै सलोक जी जंत के ठाकुर आपे वर्तन हार नानक को पसरिया दूजा कह दस्तार अष्टपति आप कदे अब सुन निहार आपे का विस्तार जद इस भावे त सिष्ट उपाय अपने पाणे लै समाए तुम ते पिन नहीं किछु होए अपन सु सब्जेक्ट रोए जग प्रभु जीव आप जाए सच नाम सो जिन पाए सो समदर्शी तत्का बेता नान सिष्ट काल जेता जी जंत्र सत्ता के हाथ दीन दयाल नाथ गुनाथ जिस राके तस कोई न मारे सो मुआ जिस मनो बिसारे तिस तजावर का को जाए सब से एक नन्य राय जी की जुगत जाके सब हाथ अंतर बार जनो साधक गुण निदान बिंद बार नानक दास सदा बलिहार पूरन पूरे दयाल सब ऊपर उत कृपाल अपने कर्तव्य जाने आप अंतर जमी रे बयाब प्रत बाल जीन बपात जो जो उस से त्यात जिस पावत लय मिलाए बहुत करे के गुण गाए माने अंतर विश्वास कर मनिया करना नानक जन जन लागै रे कना जिसकी आस ने बिरथी जैसे सेव को सेवा बने आयु कुंभुज परम पद पाई से ऊपर नाई विचार जाके मन बसे अंदर अहंकार बंधन तोर पै निर्वैर अंदर पूजा गुरु के पैर ए लोक सुखी ए परलोक सुवेले नान कर प्रभा पे मेले सा संग मिल करो आनंद गुण गाओ ऊपर परमानंद राम नाम दत्त करो विचार दुर्लभ देख करो उधार अमृत बचन के गुण गाओ प्रांतन करे स्वाओ आठ पैर प्रपे कुनेरा मिठे ज्ञान में से अंधेरा सुन उपदेश सिर ते बसाव मन छे नानक पल पाव वल्त पल दो ले सुहा राम नाम मंत्र और धार पूरे गुरु की पूरी दिखे जिस मन बसा ते साज परीख्या मन दा नाम जप ले बुलाए दू दर्द मन ते पहुंचाए सच व्यापार करो व्यापार इधर कहने भी के तुम्हारी ये खटे ग्रह को मन माए नानक बौर ना वह जाए
ਤਿਸਤੇ ਦੂਰ ਕਾਂ ਕੁਜਾਏ ਉਬਰੇ ਰੱਖਣਾ ਅਰਤੇ ਆਏ ਨਿਰਭੁਜਾ ਪਿਸਲ ਪੁਮਿਟੇ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਛੁੱਟਿਆ ਜਿਸ ਪ੍ਰਭ ਰੱਖੇ ਤਿਸ ਨਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਨਾਮ ਜਪਤ ਮਨੋ ਵਸੂਖ ਚਿੰਤਾ ਜਟ ਮਿੱਟੇ ਹੰਕਾਰ ਤਿਸ ਜਨ ਕੋਈ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਹਾਰ ਸਿਰੀ ਉੱਪਰ ਠਾਡਾ ਗੁਰ ਸੂਰਾ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਮਤ ਪੂਰੀ ਅਮਰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਸ਼ਟ ਦਰਸ਼ਨ ਬੇਖ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਚਨਕ ਮਜਾਕਿਆ ਨੂਪ ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਧਨ ਸੇਵਾ ਸੇਵਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਨ ਜਿਸਮਨ ਬਸੈ ਸੋਤ ਨਿਧਾਲ ਤਾਕੈ ਜਿਸਮਨ ਬਸੈ ਸੋਤ ਨਿਹਾਲ ਤਾਕਨ ਨਾਭ ਦੇ ਕਾਲ ਅਮਰ ਪਏ ਅਮਰਾਪਤ ਪਾਇਆ ਸਾ ਸੰਗਨਾਨ ਕਰਤੇ ਆਇਆ ਸਲੋਕ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦੀ ਆ ਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਬਿਨਾਸ ਅਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੰਤ ਪੇਟਿਆ ਨਾਨਕ ਅਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਚਪਦੀ ਸੰਤ ਸੰਗੰਤ ਪ੍ਰਭ ਡੀਠਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਕਲਾ ਕੈ ਮਿੱਠਾ ਸਕਲ ਸਮਗਰੀ ਇਕ ਸਕਟ ਮਾਇਨ ਕਰੰਗ ਨਾਨਾ ਦਿਸ਼ਟਾਇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਦਮਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ ਦੇ ਮੈਂ ਸਕੈ ਬਿਸਰਾਮ ਸੁਨ ਸਮਾਧਨ ਤੇ ਨਾਦ ਕਹਿਣ ਜਾਈ ਚਰਚ ਬਿਸਮਾਦ ਤਿੰਨ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸ ਆਪ ਦਿਖਾਏ ਨਾਨਕ ਤਿਸਨ ਸੋਝੀ ਪਾਏ ਸੋ ਅੰਤਰ ਸੋ ਬਾਰ ਆਨੰਦ ਕਟਕਟ ਪਿਆ ਪ੍ਰਿਆ ਭਗਵੰਤ ਧਰਨ ਮਾਇਆ ਆਕਾਸ ਪਿਆਲ ਸਰਬ ਲੋਕ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਬੰਤਨ ਪਰਬਤ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜੈਸੀ ਆਗਿਆ ਤੈਸਾ ਕਰਮ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬਸੰਤ ਮਾਇ ਚਾਰ ਗੁਣ ਦੈ ਦਸੈ ਸਮਾਏ ਤਨ ਤੇ ਤਿਸ ਤੇ ਪਿੰਨਾ ਹੀ ਕੋਠਾਓ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਨਣ ਸੁਖ ਪਾਓ ਵੇਦ ਪ੍ਰਾਣ ਸਿਮਰਤ ਮੈਂ ਦੇਖ ਸਸੇ ਨਿਕਤਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਭ ਕੋ ਬੋਲਿਆ ਬਡੋਲਨਾ ਕਬੂ ਡੋਲ ਲਾਇਆ ਸਰਬ ਕਰਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਇਲ ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਾਇਆ ਗੁਣਿਆ ਮੋਲ ਸਰਬ ਜੋਤ ਮੈਂ ਜਗ ਜੋਤ ਆ ਰਿਹਾ ਸੁਆਮੀ ਉਤ ਪੋਤ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਕਾ ਨਾ ਸੋ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੰਜਨ ਕਾ ਪੇਕਨ ਸਭ ਬ੍ਰਹਮ ਸੰਜਨ ਕਰਤੇ ਸਭ ਧਰਮੋ ਸੰਜਨ ਸੁਣ ਸੋ ਬਚਨ ਸਰਵ ਵਿਆਪੀ ਰਾਮ ਸੰਗ ਰਚਨ ਜਾਤਾ ਦਸਗੀਰਾ ਤੋ ਸੱਚ ਬਚਨ ਸਾਧੂ ਸਭ ਕਹਿਤ ਜੋ ਜੋ ਹੋਏ ਸੋਈ ਸੁਖਮਾਨ ਹੈ ਕਨ ਕਰਾਉਣਾ ਪਵ ਜਾਣੇ ਅੰਤਰ ਬਸੇ ਬਾਰ ਪੀ ਉਹ ਹੀ ਨਾਨਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਭ ਹੋਈ ਆਪ ਸਤ ਕੀ ਸਭ ਸਤ ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਦੇ ਸਗਲੀ ਉਤਪਤ ਤਿਸ ਭਾਵ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਤਿਸ ਭਾਵ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਨਕਾਰ ਕਲਾ ਲਖਣ ਜਾ ਜਿਸ ਭਾਵ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਸ ਭਾਵ ਹੈ ਤਿਸ ਲੈ ਮਿਲਾਏ ਕਮਨ ਨਿਟ ਕੌਣ ਕਹੀਆ ਦੂਰ ਆਪੇ ਆਪ ਆ ਭਰਪੂਰ ਅੰਤਰਗਤ ਜਿਸ ਆਪ ਜਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬੁਝਾਏ ਸਰਪੂਰ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸਭ ਨਾਨਾ ਪੇਕਨਾਰ ਸਭ ਸਮੱਗਰੀ ਜਗਤ ਨਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਸੁਣਾ ਆਵਣ ਜਾਣੇ ਖੇਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਰ ਕੀਨੀ ਮਾਇਆ ਸਭ ਖੇਲ ਮੱਧ ਲਿਪਤ ਰਹਿ ਜੋ ਕਿਸ਼ਕਣ ਸੁਭਾ ਪੇ ਗਿਆ ਗਿਆ ਵੈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਭਾਵਿਤ ਲੈ ਸਮਾਏ ਇਸ ਤੇ ਸੁਣਾਈ ਬੁਰਾ ਰਹੇ ਕਹੋ ਕਿਨੇ ਕਿਸ਼ਕਰਾ ਭਲਾ ਕਰਦੂਤਾ ਨੀ ਕੀ ਆਪ ਜਾਣੇ ਆਪਣੀ ਜੀ ਕੀ ਆਪ ਸਾਜਧਾਰੀ ਸਭ ਸਾਧ ਉਦ ਬੋਧ ਆਪਣ ਸੰਗਰਾਜ ਤਾਂ ਕੀ ਗਤ ਮਿਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ ਦੂਸਰੇ ਦਸੋ ਜੀ ਪਾਏ ਦਸਕਾ ਕੀ ਸਭ ਪ੍ਰਵਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨ ਕਿਉਂ ਜਾਣ ਜੋ ਜਾਣ ਤੇ ਸਦਾ ਸੁਖੋਏ ਆ ਮਿਲਾਏ ਲਏ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ ਉਹ ਧਨਵੰਤ ਕੁਲਵੰਤ ਪਦਵੰਤ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਜਿਸ ਹਿਰਦੈ ਭਗਵੰਤ ਧਨ ਧਨ ਧਨ ਜਨ ਆਇਆ ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਜਗਤ ਰਾਇਆ ਧਨ ਧਨ ਧਨ ਜਨ ਆਇਆ ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਜਗਤ ਰਾਇਆ ਜਨ ਕਾਮਨ ਕਹਿ ਸੁਭਾਵ ਜਨ ਕੈ ਸੰਗ ਜਿਤਾਵੇ ਨਾ ਉਹ ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੁਕਤ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਕੋ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ ਸਲੋਕ